0: পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের জন্য আবহাওয়ার সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, আগামী ১২ ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা উপকূল ও উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় দমকা হাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে, যার গতিবেগ ৪৫-৫৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা থেকে ৬৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। প্রাথমিকভাবে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। মৎস্যজীবীদের তাই আগামী ১৮ ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল ও উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण के

0: रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and and the seizure of the properties of convicted offenders to ensure the expedient

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें। कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झोटा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कलकलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, Workforce Report 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह

0: 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉ. श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल

0: मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो

0: राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination, reviews future action agenda of ministries and departments. Lok Sabha to resume discussion on public examinations prevention of unfair means, Amendment Bill 2026 today. Delhi government approves Lakshmi Yojana to provide financial assistance of 2,500 rupees per month to every eligible woman. Death toll and brutal crackdown by Pakistani forces in POJK rises to 30 during past 2 days. Iran launches multiple ballistic missiles towards US forces in West Asia. US and Saudi forces carry out joint precision strikes against Iran-aligned groups in Iraq. And Gulveer Singh becomes first Indian to win silver medal in the men's 10,000 meter race at the Commonwealth Games. Harjinder Kaur also bagged silver medal in women's weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. We have more from a correspondent.
3: During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes, highlighting the importance of citizen-centric government.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:10 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों प्यार झुकता नहीं, फिल्म का ये गीत आपने शब्बीर कुमार की आवाज में सुना। कार्यक्रम रजधारा की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, जो कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इनकी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है और इनके संरक्षण की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे। पर्यटन के लिए बाघों का नियमित रूप से शिकार किया जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी बाघ पाए जाते हैं। बाघों के साथ अनुभव कराना एक बड़ा व्यवसाय है। पर्यटक अक्सर बाघ के शावकों के साथ सेल्फी लेने या वयस्क बाघों के प्रदर्शन देखने के लिए पैसे देते हैं। ये सभी गतिविधियां शोषणकारी हैं और उनमें शामिल जानवरों के लिए हानिकारक हैं। दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए बाघों का अक्सर अवैध शिकार या फिर पालन पोषण किया जाता है। सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति होने के नाते एक वयस्क बाघ की कई बड़ी हड्डियां होती हैं, जिन्हें पीसकर औषधियां उपयोग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम और भी सिलसिले से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनवाएंगे आपको गीत फिल्म तेरी मेहरबानियां, पशु संरक्षण। जी हाँ, पशु संरक्षण अत्यंत

जी हाँ दोस्तों, पशु जीव जंतु की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानियाँ हैं। आज हम एक हेल्दी वातावरण में रह रहे हैं, उसके पीछे हमारे जीव समाज भी है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए उनका प्रयोग करते हैं। उनकी कई बाघ की बड़ी हड्डियाँ होती हैं जिनको पीस करके औषधियाँ बनाई जाती हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बाघ की हड्डियों में कोई उपचार गुण होते हैं, और इस उद्देश्य के लिए पाले जाने वाले जानवरों को क्रूर परिस्थितियों में रखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका उन कुछ शेष देशों में से एक है जो बड़ी बिल्लियों की कानूनी खेती की अनुमति देता है, लेकिन अवैध खेती भी आम है। दोस्तों, बाघ की विशिष्ट धारीदार खाल छलावरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह गलत तरह का ध्यान भी आकर्षित करती है। खालों को ट्रॉफी के रूप में देखा जाता है और ये ऊंची कीमतों पर बिकती हैं, हालांकि ये व्यापार अवैध है। बाघ के शावकों को भी कुछ बेहद धनी व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, बात हम करेंगे, लेकिन पहले इस नफरत की दुनिया में जहां हमारे जीव जंतु पशु समाज है, उनसे कैसे बचाया जाए, इस पर सोचना है।

जी हाँ दोस्तों, कई बार तो दिल लग करता है कि मनुष्य की जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पशु समाज पर अत्याचार किया जाता है, तब तो लगता है कि हम उस समाज से कहें कि ये जो नफरत की दुनिया है इसको छोड़कर दूसरी दुनिया में रहें, खुश वहीं काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में जंगली बाघों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनको संरक्षण देने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। दोस्तों, बाघ लगातार लुप्त होते जा रहे हैं, कारण पर्यावरणीय असुरक्षा, मनुष्यों का उसके पीछे उदासीन रहना, हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके साथ उनके जीवन में ताक झांक करते हैं, उनके जीवन के भीतर घुस करके हम उन्हें परेशान करते हैं, उनके लिए कठिनाइयां बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनको हम उनके एक सुरक्षित वातावरण के लिए छोड़ते नहीं। शायद यही वजह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना का की प्रयास की आवश्यकता आन पड़ी। दोस्तों, हम आगे बढ़ें और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इसकी बात करें, लेकिन इससे पहले बताएं कि बाघों के अंदर बहुत सारी कुछ खूबियां होती हैं। जैसे जैसे बाघों की आवाज़ अनोखी होती है और वे एक दूसरे को अपनी दहाड़ से पहचान सकते हैं, जिसे 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ बड़े कुशल तैराक होते हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है, वे एक बार में कई किलोमीटर तैर सकते हैं और पानी में शिकार करना उन्हें अच्छा भी लगता है। दोस्तों, एक और चीज़ है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, वो है बाघों की धारियाँ। इस बारे में बात करूँगी, लेकिन पहले सुनवाऊँगी एक गीत।

ना ना दोस्तों, हम तो नहीं कहेंगे कि तू चल में आई, मैं हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, 10 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम रसधारा में। और बात कर रहे हैं हम आज बाघों की। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और बाघों की कुछ खूबियां होती हैं जिसके बारे में हमने बात की। और बाघों की धारियाँ उंगलियों के निशान की तरह अद्वितीय होती हैं, ये हम आपको बताने वाले थे। दोस्तों, बाघों की धारियों का एक अनूठा पैटर्न होता है जिसका उपयोग मनुष्य के उंगलियों के निशान की तरह ही उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने कैमरों की सहायता से और 3D मॉडलिंग का उपयोग करके धारियों के पैटर्न के आधार पर विभिन्न बाघों की पहचान की है। तो दोस्तों, ये तो हुई बाघों की बात। अब हम बाघों के लिए कर क्या सकते हैं।

तो दोस्तों, कर तो हम इतना सकते हैं कि जब आप दान करते हैं तो आप बहुत उत्साही हो जाते हैं, और जानवरों की दुनिया के लिए बदलने के लिए यदि हम प्रतिबद्ध हों और उस जहां जहां की पशु के प्रति क्रूरता दिखाई जाती है उसके प्रति यदि हम लड़ें तो एक हम अपनी लड़ाई सफल लड़ सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को हम कैसे मना सकते हैं इस बारे में भी बात की जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुनेंगे एक गीत, फिल्म हम आपके हैं कौन से।

0: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाना चाहते हैं और सचमुच में उनके प्रति जागरूक हैं, सचेत हैं, तो हम कुछ इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं जंगली बाघों की रक्षा के लिए। जंगली बाघों को केवल सम्मानजनक और सुरक्षित दूरी से ही देखें। किसी बाघ के साथ सेल्फी लेना आपकी यात्रा की एक अविश्वसनीय यादगार चीज लग सकती है, लेकिन ये अनुभव अक्सर इसमें शामिल जानवरों के लिए बेहद हानिकारक है। बाघ के शावक विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से असुरक्षित भी होते हैं। सेल्फी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शावकों को आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह की उम्र में ही उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है, जबकि सामान्य तौर पर वे अपने जीवन के पहले 2 साल अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। जंगली जानवरों को पकड़कर बांधकर या भोजन का लालच देकर उनकी तस्वीरें कभी न लें। इसके बजाय जानवरों को सुरक्षित दूरी से देखने के अवसर तलाशें, जहां उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो। एक जिम्मेदार यात्री बने। यात्रा कंपनियां और अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देती हैं। वे अनैतिक प्रथाओं के कारण ग्राहक खोने पर और भी तेजी से कार्रवाई करती हैं। अपनी यात्रा उन कंपनियों के साथ बुक करें जो पशु संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। पशुओं की संवेदनशीलता को मान्यता देने के हमारे प्रयासों को जानने की कोशिश करें। दोस्तों, बाघ जैसे जानवर हमारे उपयोग और मनोरंजन के लिए नहीं हैं। वे संवेदनशील प्राणी हैं जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं। जानवरों की संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अभियान में ज़रूर शामिल हों जहां पर हम ऐसे दिवस मनाते हैं। थोड़ा संभल कर चलें।
1: ए भाई।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

शर्म हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

क्षण प्रकाशों पर कोशिश करते रहिए, भागीदारी में इसकी प्रोत्साहित करते रहिए, युवाओं को शिक्षित करिए ताकि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने अंदर एक जिम्मेदारी की भावना को पैदा कर सकें। इसके साथ ही आपकी दोस्त सविता आज अब आपसे कार्यक्रम रसधारा में इजाजत चाहती है। मुलाकात होगी 12 बजे कार्यक्रम सुरभि में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और हाँ, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए। सोनू निगम की गीत फिल्म तमन्ना से इस गीत के साथ अब आपकी दोस्त सविता को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने।

गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउन में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16:35 हुए हैं, जो इशारा है अंजुमन का, और साथ है आपके दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबों को मेरा प्यार भरा दा। नजर जिससे मिलने को तरसती थी वो रास्ते में यूं मिली, नजर मिलने जिससे मिलने को तरसती थी वो रास्ते में यूं मिले, हम नजर उठाकर तड़प गए वो नजर झुकाकर गुजर गए। दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का और देखते हैं कि आज के प्रोग्राम आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। हिंदुस्तान का शेरों का तहफूज जंगली हयात की बहाली का आलमी नमूना है। दोस्तों, आज 29 जुलाई है और आज का दिन टाइगर्स का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि उनके तहफूज की अहमियत को उजागर किया जा सके, उनके रिहायशगाहों की हिफाजत की जा सके और दुनिया के सबसे मशहूर शिकारी या प्रजातियों की गिरती हुई तादाद को रोका जा सके। दोस्तों, टाइगर्स जंगल के माहौलियाती निज़ाम की सेहत और तनाव को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर्स डे को वर्ल्ड टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये बताना जरूरी है दोस्तों कि इस साल का मौजू है दिल में मकामी लोगों और मुकामी

सभी कम्युनिटीज के साथ टाइगर्स के मुस्तकबल को महफूज बनाना। दोस्तों, इस मुहिम के तहत अहदाफ को वसी तर वकालत पर जोर देता है। ये शेरों के कुदरती मनाजर की हिफाजत और उनके मस्कन राहदारियों की बहाली और इंसानी जंगली हयात के तनाजात से निपटने के लिए मकामी कम्युनिटी की शमूलियत को मजबूत बनाने पर मरकूज है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंगली शेरों की आबादी का घर है, जिसमें आलमी सतह पर जंगली शेरों की तादाद तकरीबन 70% है, जो कई दहाइयों से जारी पॉलिसी सपोर्ट, साइंसी इंतजाम और कम्युनिटी की शराकत की अकासी करती है। दोस्तों, मुल्क ने 2006 के बाद से अपनी साइंसी तौर पर तखमीना शुदा शेरों की आबादी को दुगना कर दिया और इसकी शेरों की तहफूज की कोशिशें जंगली हयात की बहाली के आलमी मॉडल के तौर पर उभरी हैं। हिंदुस्तान की शेरों की आबादी 3682 बताई जा रही है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 20 रियासतों का अहाता किया और 6.41 लाख किलोमीटर पैदल सर्वे करने के बाद हुकूमत ने बताया कि हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल टाइगर डे से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि शेरों के तहफूज के लिए हिंदुस्तान का पॉलिसी फ्रेमवर्क कौमी और रियासती सतह पर मुस्तकल और दारा जाती मदद के लिए के साथ तवील मुद्दती वड़न को यकजा करता है। तो दोस्तों, हम सबों को टाइगर की हिफाजत के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है और जंगलात को इसके लिए सबसे जरूरी है जंगलात को महफूज रखना। दोस्तों, रतन जी टाटा भाई की आज यौम पैदाइश है। वो एक हिंदुस्तानी ताजर थे जिन्होंने हिंदुस्तान में टाटा ग्रुप की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अंजुमन इस अजीम ताजर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता है।

तो साहब सुन रहे अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और मैं आज आपके लिए बतौर खास लाई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज दिन है बुध और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं ख्वातीन की ख्वाहिश। दोस्तों कई ख्वाब ऐसे होते हैं कि देखने के साथ ही दम तोड़ देते हैं। कभी कभी हमने ख्वाब को कहने की हिम्मत नहीं होती और कभी हालात साथ नहीं देते और कभी हम अपने ख्वाब को समझ ही नहीं पाते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने ख्वाब को समझकर उसे उड़ने के लिए पर देते हैं। हमारे माशरे में एक तबका ऐसा है कि खुद को एक खोल में छुपाकर रखने की कोशिश में जुटा रहता है और चुपके चुपके ख्वाब देखता है ताकि कोई उससे आशना ना हो। आखिर क्या वजह है कि ये देखे हुए ख्वाब को लोग छुपाते हैं? आखिर क्या खौफ उन्हें सताता है? क्योंकि रुसवाई का डर होता है? क्या ये डर समाज के सामने डट कर खड़े होने का होता है? कुछ ऐसा ही ख्वाब पिकनिक गार्डन की फातिमा ने देखा।

फातिमा एक छोटे से घर के एक कमरे में देखे गए ख्वाब को कभी पहचान ही नहीं पाई। बचपन राजा बाजार की तंग गलियों में गुजरा। घर ऐसा था कि एक दीवार में कील ठूंकी तो पास वाले घर की दीवार पर जा निकल जाए। घरों की बातें एक घर से दूसरे घर तक पहुंचती थी। आसानी से पता चल जाता कि इसके घर में क्या हो रहा है। ऐसे में जोर आवाज में कुछ कहने की इजाजत नहीं थी और फातिमा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बातें जोर से या चीख कर कह सके। बचपन से ही भाई और वालिद का खौफ दिल में बैठ गया। ऐसे में ये हिम्मत नहीं हो सकी कि बता सके कि वो इस चार दीवारी में घुटन महसूस करती हैं। कुछ चीजें हैं जो इसके दिल को बेचैन किए रहती हैं। कुछ तो है तो वो चाह कभी नहीं समझ पा रही थी। ऐसी क्या चीज है कि वो इसका ताकुब कर रही है लेकिन वो उससे नजरें छुपा रही है।

असल में घर में इधर उधर बिखरी हुई चीजों से वो बहुत मायूस हो जाती थी और उसे संवारने की कोशिश करने लगती। फिर छोटी छोटी चीजों की मदद से उसे नई शक्ल देने की कोशिश करती। उसकी कारकर्दगी को घर वाले सराहने लगे तो आस पड़ोस में भी उसका बुलावा आने लगा और मुफ्त में वो ऐसा मशवरा देती कि घर में घर का काया ही पलट जाता। और ऐसे ही ये एहसास हुआ कि उसके अंदर सजाने और सवाने की सलाहियत है, जिसे प्रोफेशन की जबान में इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं। इंटीरियर डिजाइनर, जी हाँ दोस्तों, ये नाम अपने आप ही बहुत कुछ बयां कर देता है। ये वो प्रोफेशन है या ये वो काम है जो एक घर को, एक मकान को घर बनाता है। वक्त का पहिया घुमा और जब उससे बाकायदा कोर्स करने की ख्वाहिश जाहिर की तो फीस देकर पीछे हट गई। ना ही उसके पास इतने पैसे थे, ना ही कोई जरिया। बहुत मुश्किल से भाई और वालिद ने एक छोटे से कमरे से निकलकर पिकनिक गार्डन में दो कमरों का फ्लैट लिया। वो जद्दोजहद से कम नहीं था, लेकिन इस फ्लैट को अपनी सलाहियत के मुताबिक उसे जन्नत तो ज़रूर बना दिया, लेकिन इससे आगे क्या।

वो इस ख्वाब को पूरा ना कर पाने का दुख किसे और कैसे बयान करती। हर वक्त जहन में यही रहता कि काश उसे उसकी मुताबिक नौकरी मिल जाती। लेकिन नौकरी के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसके पास कोई डिग्री नहीं थी। फातिमा का कहना है कि वो आज भी ये ख्वाब देखती है, और जाहिर है कि अब उस ख्वाब को पूरा करने में ना ही उसके पास इतनी हिम्मत है, ना ही उतना वक्त है। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके पैरों पर जो बेड़ियां डाली है, उससे वो आगे निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाती है। फातिमा का कहना है कि उसकी जैसे कई हजारों लाखों फातिमा उन गलियों में आज भी चुपचाप से बैठी है, जो ख्वाब तो देखना जानती है, लेकिन उसे अमली जामा कैसे पहनाना है और कैसे उसे सपनों के पंख लगाने हैं, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। दोस्तों, आप अभी समाप्त फरमा रहे थे ख्वातिन की ख्वाहिश के तहत मैं इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ।

सुन रहे अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और आज दिन है वो। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं गर सास छेड़ा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम छेड़ेंगे सास और साथ भी होंगी कुछ हमारी और आपकी बातें।

बात थी दिल में मगर फिर भी तुम्हें कह ना सका, बात थी दिल में मगर फिर भी तुम्हें कह ना सका, रह गया आंखों में सब कुछ ही तुम्हें कह ना सका। दोस्तों, ऊपर वाले ने इंसान

जब पैदा किया तो उसे शक्ल, वसूरत, रंगत, हाथ पैर के साथ जिंदगी जीने का सलीका, आदाब, अंदाज के साथ एहसासात को भी कूट कूट कर डाल दिया। पसंद नापसंद, ख्वाहिशात, उम्मीद और जद्दोजहद के बीच एक शय जो सबसे कीमती दी वो है दिल। यहाँ दोस्तों बज़ाहिर ये छोटा सा लफ्ज है, अंग्रेजी में तीन हरफ और उर्दू में दो हरफ में ही इसको बयान कर दिया जाता है, लेकिन इस दो हरफ वाले दिल यानी दिल आखिर क्या शय है? आखिर इंसान के जिस्म में इसका क्या रोल है कि इसके आगे इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है? दिमाग जो इंसान के जिस्म का सबसे कीमती और ताकतवर शय है, वो भी दिल के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। पूरे जिस्म में इंसान के सीने में धड़कने वाला ये दिल साइंसी दुनिया का अहम जूज है, लेकिन ये अच्छों अच्छों को घुटने टेकने पर भी मजबूर कर देता है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, दिल उदास है, दिल बेचैन है, दिल तो दे दिया, ये दिल का मामला है। अब दिल आ गया, दिल को समझा लिया, दिल को थपक थपक कर सुला लिया। दिल दिल दिल, आखिर ऐसा क्या छुपा है इस दिल में जो इंसान को बेबस करके छोड़ देता है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दिल की बातें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम रूप तेरा मस्ताना, कलाम है असद भोपाली और मौसीकी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जी हाँ दोस्तों, दिल की बातें दिल ही जानती है। दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है, तलत सलाहुद्दीन और मैं लाई हूँ घर सास छेड़ा, जहाँ हम बात कर रहे हैं दिल की। दिल पे कुछ और ही गुजरती क्या कीजिए, दिल पे कुछ और ही गुजरती क्या कीजिए, लफ्ज कुछ और ही इजहार किए जाते हैं। दोस्तों दिल की कैफियत बयान करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है जब सामने मोहब्बत हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जबान कुछ भी अदा ना कर पाता और दिल की बातें दिल में ही रह जाती। ये समझ लीजिए कि दिल तो खामोश रहकर अपनी अंदर टूट फूट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये एहसास सारी जिंदगी रह जाती कि काश मैं उसे दिल की बात कह पाती। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है कि दिल लगाना और दिल देना दोनों आसान काम नहीं। जब बात मोहब्बत की आती है तो इसके लिए वो खास दिल चाहिए जो हर कोई मोहब्बत को निभा नहीं सकता। बहुत कम लोग हैं जो मोहब्बत करके उसे निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इंसान मोहब्बत के नज़रिए से ही देखे या हर किसी को मोहब्बत हो जाए। जब मोहब्बत होती है तो फिर इसकी अपनी खास इंफरादियत है। किसी खास के लिए ही दिल धड़कता है और हर किसी के नाम पर दिल धड़के तो ये ज़रूरी नहीं। ये तो वो एहसास है जो किसी खास के लिए ही पहले इशारा देता है और फिर इंसान को बेबस कर देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक ऐसा ही निहायत ही प्यारा सा नगमा SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म का नाम जी हाँ दोस्तों, आप इसकी धुन ही सुन के समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। 80 की दहाई में आई ये फिल्म। फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। इस नगमे को लिखा है असद भोपाली और मौसीकी है राम लक्ष्मण की।

जी हाँ दोस्तों, दिल को समझाना नहायत ही मुश्किल है, और जब बात मोहब्बत की आती है तो फिर दिल के नखड़े भी अजीब हो जाते हैं। तभी तो किसी ने खूब कहा है, दिल को तेरी चाहत को भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत का भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। इंसानी जज्बात जैसे खुशी, गम और अपनाइयत का एहसास यहीं से होता है दोस्तों। मोहब्बत के कई रूप होते हैं। सच्ची मोहब्बत दिल को ताकत और सुकून देती है, और नाकाम मोहब्बत दिल को तोड़ देती है। दिल का मामला मोहब्बत, जज्बात, एहसासात, मोहब्बत की दुनिया की एक खूबसूरत और पुरानी बात है, जिसे शायरों ने बहुत दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। ये जिंदगी उल्फत और दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ खास मौजू है, और जब बात दिल और मोहब्बत की है तो ये आपस में गहरा ताल्लुक है। दिल वो मकाम है जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है, पनपती और अपने असरात छोड़ती है। मोहब्बत इंसान को जीने का हौसला देती है, मगर कभी कभार ये दिल की तकलीफ और उदासी की वजह भी बन जाती है। सिकंदर कलाम है अनजान, और मौसीकी है कल्याण जी आनंद जी की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:52 हुए हैं। दोस्तों हम लाए हैं कर साज छेड़ा, जहां हम बातें कर रहे हैं दिल पर। अगर कोई सवाल करे कि आखिर मोहब्बत क्या होती है, ऊपर वाले इंसान के दिल में एक खास कुदरती जज्बा रखा है जो किसी खास शख्स की तरफ खींचता है। जिसके साथ इंसान खुद को महफूज समझे उससे मोहब्बत हो जाती है। ख्यालात आदत का मिलना दिल में मोहब्बत पैदा करता है। अगर कोई हमें सराहता है, अहमियत देता है, दिल आसानी से उसकी जानिब मायल हो जाता है, क्योंकि दिल को हमेशा तवज्जो की ज़रूरत होती है और जब वो तवज्जो मिल जाती है तो फिर मोहब्बत बड़ी आसानी से पैर फैलाकर दिल में विराजमान हो जाती है। तो दोस्तों सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, कलाम आनंद बख्शी और मौसीकी है उत्तम सिंह की।

है तो धड़कने का बहाना को ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना को ढूंढे, पत्थर की तरह बेहस बेजान सा क्यों है। दोस्तों आप सुन रहे थे अंजुमन साथी तलत सलाहुद्दीन और हमने बात की दिल पर। जी दोस्तों अब अंजुमन वक्त और आपसे इजाजत लेने का, मैं तलत सलाहुद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। अब कुछ ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे वेस्टर्न प्रोग्राम, जहाँ साथ होंगी अविरूपा भादुरी।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:30 में आपकी दोस्त सविता पोद्दार सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सुरभि में। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। चर्चा है में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, साथ में हम बात करेंगे जयंती है आज जेआरडी टाटा की। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और अवैध शिकार को रोकना। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में, इस दिन की स्थापना की गई थी। वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना इसका लक्ष्य तय किया गया था और इसमें शामिल देश थे भारत सहित 13 बाघ संरक्षण वाले देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य और महत्व यही था कि पर्यावरण संतुलित हो, बाघ स्वस्थ और संतुलित जंगल के प्रतीक हैं, लोगों को यह समझाना कि बाघों का विलुप्त होना पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। दुनिया में 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहलों से देश में इनकी संख्या में लगातार सुधार हुआ है। दोस्तों 2026 में 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने, जंगली बाघों के सामने मौजूद खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके आवासों की रक्षा के लिए सतत प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत जो विश्व की सबसे बड़ी जंगली बाघ आबादी का घर है, प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक बाघ संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो आज चर्चा है में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की और हम अब बात करेंगे जेआरडी टाटा के जन्मदिन की। 29 जुलाई को महान उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा का जन्म हुआ था, उन पर हम चर्चा करेंगे। उद्योगपति जहांगीर रतनजी टाटा भाई दादा भाई टाटा जिन्हें जेआरडी टाटा के नाम से जाना जाता है, वे लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जेआरडी टाटा 50 वर्षों तक टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष रहे और उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों और सफलता तक पहुंचाया। एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ जेआरडी टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। उन्होंने भारतीय समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि उनका दृष्टिकोण भारत को एक समृद्ध देश से कहीं अधिक एक खुशहाल देश बनाने का था। भारत को सबसे सस्ती कार, सबसे पतली घड़ी से लेकर सबसे बड़े कॉस्मेटिक ब्रांडों में से एक लम्हे तक उनका योगदान अतुलनीय है। जेआरडी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में प्रख्यात व्यवसायी रतनी दादा भाई टाटा और सुजैन ब्रियर के घर हुआ था। जेआरडी टाटा की मातृभाषा फ्रेंच थी। जेआरडी टाटा ने लंदन में अपनी शिक्षा पूरी की और फिर फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए जहां उन्होंने एक वर्ष तक सेवा की। दिसंबर 1925 में जेआरडी टाटा ने अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश किया टाटा में।

महज 34 वर्ष की आयु में जीआरडी टाटा को टाटा संस का अध्यक्ष चुना गया। इससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के प्रमुख बन गए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की संपत्ति 101 मिलियन डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन डॉलर हो गई। जीआरडी टाटा 10 फरवरी 1929 को वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। जीआरडी टाटा ने 1932 में भारत की पहली घरेलू एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की। एयर इंडिया का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया और टाटा इसके अध्यक्ष बने। 1962 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अकेले उड़ान भरी। 1968 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। जीआरडी टाटा को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 1983 में फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिससे वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले उद्योगपति बन गए। उन्हें भारत में परिवार नियोजन आंदोलन शुरू करने और उसे लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज चर्चा में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, साथ में प्रसिद्ध उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, जिनका की आज जन्मदिन है, उन पर हमने चर्चा की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता।

दोस्तों कार्यक्रम सुरभि में अब अगले पायदान पर प्रस्तुत है कार्यक्रम पहल। पहल में आज हम बात करेंगे नई रोशनी योजना की, जिसके तहत भारत सरकार ने आरंभ की है एक योजना जो कि 26 करोड़ रुपए इसमें मंजूर की हैं और इसके माध्यम से लगभग 1,00,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से आज की पहल जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। नई रोशनी, नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणाली, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान कर अल्पसंख्यक महिलाओं, उनके पड़ोसियों सहित एक ही गांव इलाकों में रहने वाले अन्य समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न करना है। यह पूरे देश में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की मदद से चलाया जाता है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए वकालत जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। इस योजना का महत्व महिलाओं का सशक्ति

पर्यावरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है बल्कि गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और नागरिक समाज की मजबूती के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। गरीबी से त्रस्त महिलाएं और बच्चे हमेशा सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं तथा उन्हें समर्थन की ज़रूरत होती है। महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घरों में वह अपनी संतानों का पालन पोषण करती हैं। यह अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके घर और समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करती हैं और वे जीवन और जीवन से संबंधित स्थितियों में सुधार के लिए सरकार के विकास लाभों पर अपने उचित हिस्से का दावा करने के अलावा सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से सेवाओं, सुविधाओं, कौशल तथा पहुंच प्राप्त कर नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं व अपने अधिकारों का दावा करती हैं। दोस्तों, इस अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएं हैं जैसे गरीब नवाज रोजगार योजना, सीखो और कमाओ, बेगम हजरत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, आज हमने पहल कार्यक्रम में बात की नई रोशनी योजना की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ सविता। कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आपके लिए फिल्म एक दूजे के लिए ये गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और इस गीत के साथ ही अब आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी फिर हमारी आपकी 4 अगस्त को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।

0: वाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनः निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani.

0: असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद के प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की।

0: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे? तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
4: हाँ।
3: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए

0: रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন মধুবন্তির আগে বাঁশি বাজিয়ে শোনাবেন শক্তিপদ নাগ। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন পণ্ডিত সুজিত সাহা।

0: আকাশবাণী কলকাতা, মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় 4:59:49। একটু পরই দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
2: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
1: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा।

0: वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुँचाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth. Dr. Singh criticized Leader of the Opposition Rahul Gandhi for using unparliamentary language, calling it inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded that he should apologize in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. The House also witnessed 2 brief adjournments during the discussion after the passage of the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla adjourned the House till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21 और 27 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दोस्तों, शुरू हो चुका है कार्यक्रम उर्वशी, और उर्वशी के अंतर्गत आज यानी बुधवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का खास सेगमेंट दिव्या।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चिन्मयी श्रीपद के साथ गोपी सुंदर की आवाज में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत। दोस्तों आज के कार्यक्रम उर्वशी के दिव्या के अंतर्गत हम एक ऐसे महान वीरांगना के विषय में बातें करने जा रहे हैं कि जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है, और ना ही सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि उनकी जीवन की गाथा सुनकर हमें ये समझ में आता है कि जो साहस है वो हमारे भीतर से यानी हमारे अंदर से ही आता है। दोस्तों आज हम बातें करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक वीरांगना की कथा के विषय में, जिन्होंने अपने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उस समय अपनी आवाज जो है बुलंद की, जो समय था चुपचाप बैठने का, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा समय जब अधिकांश भारतीय राजा महाराजा अंग्रेजों की शक्ति से हो गए थे भयभीत। ये वीरांगना थी कि तूर की रानी चेन्नम्मा। दोस्तों जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाता है तो प्रायः 1857 की क्रांति का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग इस विषय में जानते हैं कि तीन दशक पहले 1857 के तीन दशक पहले दक्षिण भारत की एक साहसी रानी ने अंग्रेजों को चुनौती देकर ये सिद्ध कर दिया था कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाली महिलाएं केवल परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की रक्षा करने का भी साहस रखती हैं। रानी चेन्नम्मा केवल एक रानी ही नहीं थी बल्कि वे साहस, आत्मसम्मान, नेतृत्व और देशभक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने ये संदेश दिया था कि अन्याय के सामने झुकना कायरता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 1778 ईस्वी में जन्म लेने वाली रानी चेन्नम्मा, वर्तमान कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था और इस राज्य के बेलगावी यानी बेलगाम जिले के काकती नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था धूलप्पा देसाई और माता का नाम था पद्मावती। उन्होंने परिवार का सम्मान भी जो है वो भी उसकी भी रक्षा की, और उनका परिवार जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था वो परिवार भी काफी सम्मानित था और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया आगे बढ़कर। बचपन से ही चेन्नम्मा अत्यंत बुद्धिमान और निडर के साथ साथ जिज्ञासु भी थी। उन्होंने उस समय जो अधिकांश लड़कियां थी वो सिर्फ घरेलू कार्य ही सीखा करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखी जो उस समय माना जाता था कि महिलाओं के लिए नहीं सिर्फ पुरुषों के लिए होती है। उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की, उन्होंने युद्ध कला के साथ साथ प्रशिक्षण और भी बहुत सारे प्रशिक्षण जो है उन्होंने लिया। उन्होंने कन्नड़ी, मराठी, संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में भी उनको अद्भुत दक्षता हासिल थी। वे बचपन से ही तेज गति से दौड़ने और तलवार चलाने में निपुण हो गई। दोस्तों आज हम बातें करने जा रहे हैं एक ऐसी रानी के विषय में जिन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के दम पर वह कर दिखाया जो कि सबको बहुत ही मुश्किल लगता था। हम बातें कर रहे हैं रानी चेन्नम्मा की।

दोस्तों, फिल्म लगान से अभी अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण के साथ अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 5:39 आप सुन रहे हैं उर्वशी में दिव्या के अंतर्गत कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के विषय में कुछ खास बातें। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उन्हें देखता था उनकी वीरता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। बचपन से ही उनके अंदर कई सारे गुण थे। रानी चेन्नम्मा जो थी, उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वे गरीबों की सहायता करती थीं और अन्याय का विरोध करती थीं। यदि किसी के साथ अत्याचार होता तो वे निडर होकर उसके पक्ष में खड़ी हो जाती थीं। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक महान शासक और योद्धा बनने में सहायक बने। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जीवन के वास्तविक अनुभव, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे, उनको भी बहुत कुछ उनसे सीखा। और साथ ही वे समझ चुकी थी कि वे एक ऐसे शासक का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपनी प्रजा की वो रक्षा करें। तो एज अ शासक उन्होंने भी अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने हर प्रयत्न किए। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत का सामना भी करने का निर्णय लिया। दोस्तों, युवावस्था में चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज देसाई से हो गया था। और उस समय कित्तूर दक्षिण भारत का एक बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट राज्य माना जाता था, और ये वर्तमान कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र में स्थित था। अपनी उन्नत कृषि, व्यापार और संस्कृति समृद्धि के कारण ही कित्तूर दूर दूर तक प्रसिद्ध भी था। दोस्तों, विवाह के बाद चेन्नम्मा केवल राजमहल तक सीमित नहीं रही, उन्होंने राज्य के प्रशासन, न्याय व्यवस्था और जनता की समस्याओं को भी गहराई से समझना शुरू कर दिया। वे अक्सर ही प्रजा के बीच जाती थीं और उनकी बातें भी सुनती थीं, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की चेष्टा भी करती थीं। इसी कारण लोग उन्हें केवल अपनी रानी नहीं बल्कि अपनी संरक्षक और माता के समान भी मानने लगे थे। दोस्तों, एक आदर्श शासक के रूप में रानी चेन्नम्मा का ये मानना था कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा उसकी जो शक्ति होती है वो होती है जनता। इसीलिए उन्होंने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों सभी के हितों का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी फैसले लिए उससे वे और भी लोगों के करीब हो गईं। किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने और साथ ही व्यापार को बढ़ावा भी दिया। न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष भी बनाया और सेना के आधुनिक और अनुशासित बनाने में भी उनका योगदान रहा। रानी स्वयं सैनिकों के प्रशिक्षण का निरीक्षण करती थीं और घुड़सवारी और तलवारबाजी में इतनी दक्ष थीं कि कई बार सैनिक भी उनकी युद्ध कला देखकर बेहद आश्चर्यचकित रह जाते थे। और अगर बात की जाए उनके पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन की, तो दोस्तों समय के साथ रानी चेन्नम्मा के जीवन में कई कठिनाइयां भी आने लगी। उनके पुत्र की

आयु में ही मृत्यु हो गई और उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख उनके लिए यही रहा। और इसके साथ ही कुछ समय बाद उनके पति राजा मल्लसर्ज देसाई का भी देहांत हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है बहुत सुखमय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस और धैर्य के साथ अपने जीवन को जिया और हार नहीं माना। दोस्तों, अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और उनकी उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, धीरे धीरे भारत के विभिन्न राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर रही थी। ऐसे में अंग्रेज केवल व्यापार तक सीमित रहना नहीं चाहते थे, उनका उद्देश्य था कि पूरे भारत पर वे कर सकें शासन। वे भारतवासी या फिर यूं कह सकते कि वे भारतीय राज्यों की छोटी छोटी कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपने अधीन कर रहे थे। कित्तूर जैसा समृद्ध राज्य भी उनकी नजर में था। जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चला कि रानी चिन्नम्मा के दस्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे किसी भी तरह से कित्तूर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, क्योंकि ये राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध था। ऐसे समय में रानी चिन्नम्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि कित्तूर स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। किसी विदेशी शक्ति को हमारी स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है। और यही से संघर्ष की शुरुआत हो गई, जिसने भारतीय इतिहास में एक नई क्रांति की नींव भी रखी।

दोस्तों हम लोग अभी सुन रहे थे फिल्म दिल से ये गीत, लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक और गीत है हमारे पास उदित नारायण और हरिहरन की आवाज़ में। फिल्म का नाम स्वदेश, और आपको बता दें कि आज कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के विषय में हो रही थी बातें, और आपको बताऊं कि 1824 में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था अंग्रेज अधिकारियों के विरोध में, और साथ ही कित्तूर के अधिकार करने के उनके सपने को अधूरा रहने दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि उन्हें विश्वास था कि ये छोटा सा राज्य है अधिक देर तक उनके सामने नहीं टिक सकेगा, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अपने साहस के दम पर उन्हें ये दिखा दिया कि किस प्रकार से वो युद्ध भूमि में डटकर उनका सामना कर सके हैं, और फिर धीरे धीरे लोगों को उनकी कहानी के बारे में पता चलने लगा। इस विजय ने पूरे दक्षिण भारत में एक संदेश दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं है, यदि साहस, संगठन और आत्मविश्वास हो तो विदेशी शासन का सामना किया जा सकता है। रानी चेन्नम्मा की ये जीत केवल कित्तूर की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान की जीत थी, और उनके साहस ने अनेक लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित कर दी थी। दोस्तों फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, चलते चलते ये गीत आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक

0: राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, ठंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youths.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded an apology from him in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. To address the deteriorating air quality challenge, the government has approved a vehicle fleet renewal initiative named Parivartan Program for accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions. The scheme aims to replace old and high-emission trucks and buses in the Delhi National Capital Region with

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 45 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, और आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज की वार्ता। दोस्तों, वार्ता के अंतर्गत आज हम एक ऐसे विषय पर अपनी बातें करने जा रहे हैं जो बातें बहुत ही खास हैं, क्योंकि एक ऐसे विषय पर ये बातें हैं जो एक वन्य जीव की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। दोस्तों, इस विशेष दिवस को प्रति 29 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बाघ केवल एक सुंदर और शक्तिशाली वन्य जीव ही नहीं, बल्कि हमारे जंगलों का संरक्षक भी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका संतुलन बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण जीव भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत के विषय में अगर बात की जाए तो ये दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। दोस्तों, वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में ये जो दिवस है इसे मनाने की शुरुआत हुई। उस समय दुनिया के 13 बाघ आवास वाले देशों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनके संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि वर्ष 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। तभी से प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में भी बाघ की एक विशेष स्थिति है, एक विशेष महत्व है, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत के लिए बाघ एक महत्व

बेहद महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही इस दिवस को मनाने की अगर बात की जाए तो ये भी विशेष है क्योंकि एक राष्ट्रीय पशु होने के तहत ये हमारे लिए बेहद खास तो है ही। इसकी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गरिमा भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान भी रखते हैं। भारत में विश्व में जंगली बाघों की सबसे बड़ी संख्या आबादी वाले देश को के रूप में जाना जाता है और साथ ही दुनिया के अधिकांश जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास और जीवन की रक्षा करना हमारा बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट योगदान होगा इनको बचाए रखने में। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि बाघ जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों कोई भी वन्य जीव पूरी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बाघ जंगल के शीर्ष शिकारी के रूप में जाने जाते हैं तो इस तरह से वे जंगल में शाकाहारी जीवों की संख्या को संतुलित रखते हैं। यदि बाघ न हो तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है जिसका प्रभाव जंगल स्रोतों के साथ साथ जैव विविधता और अंततः मानव जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों एक समय था जब एशिया के घने जंगलों में हजारों बाघ स्वतंत्र रूप में विचरण करते थे लेकिन पिछले 100 वर्षों में उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियां थी। आज भी बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन खतरे पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। बाघों के विशेष उनके विषय में जो खास प्रमुख खतरे हैं उनकी बात अगर की जाए तो सबसे पहले बात आती है वनों की कटाई की। दोस्तों तेजी से बढ़ती जनसंख्या के विषय से सड़क निर्माण, उद्योगों और शहरों के विस्तार के कारण जंगल लगभग कम होते जा रहे हैं और जब जंगल नष्ट हो जाते हैं तो बाघ अपना प्राकृतिक आवास खो देते हैं। इससे उन्हें भोजन और सुरक्षित रहने की जगह भी नहीं मिलती जिसकी वजह से उनकी संख्या कम होने लगती है। इसके अलावा कई जगह पर अवैध शिकार जिस पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, कुछ लोग लालच में भी कई बार चूंकि जंगल के कटाव हो रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी इनकी जो बाघों की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष है वो वर्षों से चला आ रहा है। जब जंगल छोटे होते जाते हैं तो बाघ भोजन की तलाश में गांवों के पास पहुंच जाते हैं और ऐसे में मनुष्य और बाघ के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ता जाता है। ऐसी घटनाओं में कभी मनुष्यों की जान जाती है तो कभी बाघ मारे जाते हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन भी एक तरह से इनकी संख्या में कमी का एक कारण है। बढ़ता हुआ तापमान, अनियमित वर्षा और साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी बाघों के आवास को प्रभावित कर रही हैं। विशेष रूप से सुंदरवन जैसे क्षेत्रों में समुद्र का बढ़ता जल स्तर बाघों के लिए नई चुनौती बन रहा है।

दोस्तों भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो देश में कई प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें प्रमुख है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले पहले टाइगर रिजर्वों में से एक है। यहाँ घने जंगल, नदियाँ और समृद्ध जैव विविधता को देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए हमारे अगले टाइगर रिजर्व की तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है, ये अपने ऐतिहासिक किले और खुले जंगलों में घूमते बाघों के लिए विश्व

विश्व भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करता है, और हरी भरी घाटी और विशाल घास के मैदानों वाला ये क्षेत्र बाघों के साथ साथ बारहसिंगा जैसे दुर्लभ वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ बाघों को देखने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है और इसका ऐतिहासिक किला भी आकर्षण के केंद्र के रूप में जाना जाता है। और अगर बात की जाए हमारे राज्य यानी पश्चिम बंगाल की, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये विश्व भर का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यहाँ पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर अपनी तैराकी की क्षमता और विशेष अनुकूलन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ और भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए तो बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज ये खास दिवस है, तो इस खास दिवस को सिर्फ एक दिवस के रूप में नहीं बल्कि एक जागरूक बनाने के लिए भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी ये दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और बाघों की संख्या जो है वो न घटे इसके लिए हमें भी अपने योगदान जरूर देने होंगे। दोस्तों आज वार्ता में बस इतना ही। 6:19:40 स्टूडियो की घड़ी में समय। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:34 आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। मैं देविका हूँ आपके साथ लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है गुलगुलशन। जी हाँ, मिश्रित गीत संगीतों से भरा ये कार्यक्रम आप सभी के लिए पेश है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के लिए पेश है आज कुछ बेहतरीन तराने। फिलहाल आप सभी के लिए आज का अगला तराना अलीशा चिनॉय की आवाज में और पिछला तराना आप सुन रहे थे राघव माथुर की आवाज में।

वेलफ्रेंड स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:46 और एक के बाद एक बेहतरीन जो मिश्रित गीत संगीत वाले गीत हैं आप सभी के लिए पेश हैं कार्यक्रम और गुलगुलशन के अंतर्गत।

दोस्तों, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:56. आज का अगला गीत सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को अभी के लिए इजाजत।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:30 और 58 सेकेंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इस ओर इशारा कर रही है कि आप सभी का स्वागत हो चुका है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में। दर्पण के अंतर्गत आप सभी के लिए सबसे पहले प्रस्तुत है एक नजर। दोस्तों, एक नजर के अंतर्गत हम आज सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल टाइगर डे के विषय में, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के विषय में। दोस्तों, आज है 29 जुलाई और पूरे विश्व में ये खास दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बाघ केवल एक सुंदर और शक्तिशाली वन्य जीव नहीं, बल्कि हमारे जंगलों का संरक्षक और हमारे जो नेचर है इसको बैलेंस करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जीव है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत के विषय में अगर बात की जाए तो 2010 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और आपको बताएं कि इस शुरुआत के साथ ही सभी ने मिलकर ये प्रयास किया कि जो बाघ जो हैं वो उनकी संख्या घटती जा रही है, उसे रोकने की कोशिश ज़रूर की जाएगी और इस कोशिश में हर कोई अपना अपना योगदान देगा। दोस्तों, आज 29 जुलाई है और आज हमारे देश के एक महान उद्योगपति, दूरदर्शक, विचारक, समाज सेवी और भी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, या यूं कह सकते हैं उनको हम आज याद करेंगे जिन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया इस देश के निर्माण में। मैं बात कर रही हूँ जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा की। दोस्तों, हम इन्हें JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं और उनकी जयंती पर हमें उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था और वे टाटा समूह के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और विमानन क्षेत्र को नई दिशा दी। वर्ष 1929 में वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी बने।

दोस्तों, भारत सरकार ने उनके असाधारण योगदान के लिए वर्ष 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया। ये सम्मान इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। दोस्तों, अब समय है कि हम आपको कुछ बेहतरीन तराने भी सुनाएं और साथ ही बात करें आज के अगले सेगमेंट जो कि दर्पण के अंतर्गत आता है उसकी। तो दोस्तों, आपको बता दें आज यानी बुधवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा अगला सेगमेंट एक नज़र के बाद राही मतवाले, और इसके अंतर्गत आज किस जगह के विषय में होंगी बातें ये तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये बेहतरीन तराना। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे के साथ अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था लुटेरा। लुटेरा फिल्म के अंतर्गत आइए जो बेहतरीन तराना है इसे आप सुन रहे थे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर। और दोस्तों आपको बता दें इस चैनल पर जो हमारा अगला सेगमेंट शुरू हो चुका है दर्पण के अंतर्गत, तो दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत अब प्रस्तुत है राही मतवाले, जिसमें आज हम बातें करेंगे हमारे पश्चिम बंगाल में ही स्थित एक ऐसी जगह की जो जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने पहाड़ों के लिए जानी जाती है, साथ ही यहाँ है हरे भरे जंगल भी। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ लोले गांव के विषय में। लोले गांव जो है ये बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ही एक खास हिस्सा भी है, साथ ही इस जगह के सौंदर्य और पर्यटक स्थल के विषय में आज राही मतवाले के अंतर्गत होंगी बातें। दोस्तों कलिंगपोंग जिले के अंतर्गत बसा ये हरे भरे जंगलों में बसा एक ऐसा पर्यटक स्थल है यानी लोलेगांव एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो एक अनमोल रत्न है, जो हिमालय के मनमोहक दृश्य, शांत प्राकृतिक पगडंडियों और साथ ही वास्तविक पर्वतीय जीवन के अनुभव को बहुत ही खूबसूरती से प्रदान करता है। चाहे आप किसी भी जगह यहाँ आसपास चले जाएं, हर जगह प्रकृति की सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये जो स्थान है ये अपने आप में अपने जंगलों के लिए भी विख्यात है। दोस्तों समुद्र तल से लगभग 1675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लोलेगांव पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग जिले के एक शांत हिमालयी गांव है और आपको बता दें कि अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये बेहद प्रसिद्ध है। लोलेगांव पर्यटन के लिए बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि यहाँ यात्रियों को बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें देखने को मिलती हैं जो कि भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर शांत पहाड़ी स्टेशन का अनुभव करवाती हैं। दोस्तों इस क्षेत्र का समृद्ध इतिहास भी है। यहाँ लेपचा और नेपाली समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी परंपराएं, त्योहार और सरल जीवन शैली पूर्वी हिमालय की संस्कृति समृद्ध खूबसूरती से दर्शाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें चीड़, बलूत और सरू के घने जंगलों से घिरा ये क्षेत्र ताजी पहाड़ी और हवा के साथ साथ साफ मौसम में कंचनजंगा पर्वतमाला के मनमोहक दृश्यों का भी आनंद देता है। तो अगर आप यहाँ के इतिहास के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को जानना चाहते हैं तो ज़रूर आएं क्योंकि यहाँ पर आपको प्रकृति का एक निर्मल खूबसूरत दृश्य देखने को मिल सकता है। दोस्तों कृषि और पर्यावरण साथ ही पर्यटन स्थल यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आरामदायक होमस्टे के साथ साथ छोटे छोटे रिजॉर्ट्स और यहाँ रहने वालों के लिए सुविधाजनक जो व्यवस्था है वो भी यहाँ प्रदान की जाती है। लोलेगांव की खासियत यहाँ के हरे भरे जंगल, मनोरम दृश्य और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की जो एक तरह से एनर्जी है वो यहाँ के आतिथ्य को और भी अनूठा बना देती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकृति फोटोग्राफी और साथ ही शांति की तलाश में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल का लोलेगांव आपके लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि हिमालयी पहाड़ियों के जीवन के साथ साथ आकर्षक खूबसूरती यहाँ आपको आपके मन मोह लेगी। दोस्तों आपका मन मोहने के लिए यहाँ पर जो दृश्य हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो लोलेगांव के दर्शनीय स्थल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें से अगर बात की जाए कैनोपी वॉक की तो ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बता दें कि अगर आप लोलेगांव पर्यटन में एक अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में हैं तो फिर आप कैनोपी वॉक ज़रूर जाएं क्योंकि ये एक ऐसा लटका हुआ लकड़ी का पुल है जो घने जंगल में ऊंचे पेड़ों के बीच से होकर गुजरता है और यहाँ आने वाले यहाँ के खूबसूरती को देखना बहुत पसंद करते हैं। पेड़ों की चोटियों के बीच टहलने और साथ ही चारों ओर फैली हरी

हरियाली की वो मनमोहक हरियाली से भरी जो मनमोहक दृश्य है उसे देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि आपके लिए कर रहा है आज के कार्यक्रम का अगला गीत इंतजार। तो आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह के साथ शुभांशु खेसवानी की आवाज और साथ ही अमित मिश्रा की आवाज में ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इस गीत को 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संजेता चैनल पर। और दोस्तों आपको बता रही हूँ मैं लोले गांव घूमने के पर्यटक जो स्थल हैं उनके विषय में। तो दोस्तों दारा व्यू पॉइंट जो है वो लोले गांव का एक प्रसिद्ध व्यू पॉइंट है और यहाँ से आप सुंदर पहाड़ियों के साथ साथ आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी कंचनजंघा पर्वतमाला जो है उसको आप आराम से देख सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ का सूर्योदय और पर्वतीय दृश्य बहुत ही शानदार होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करता है। साथ ही अगर बात की जाए हेरिटेज फॉरेस्ट की तो हेरिटेज फॉरेस्ट भी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ से ढके रास्ते और साथ ही सुकून से भरे पैदल चलने वाले जो मार्ग हैं वो काफ़ी फेमस हैं। कई पर्यटक यहाँ की बहुत ही सुंदर जो ये दृश्य है उनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि लोले गांव को इतना लो

लोकप्रिय बनाने में हेरिटेज फॉरेस्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। दोस्तों, लोलेगांव व्यू पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस स्थान से हिमालय पर्वत श्रृंखला और आसपास की घाटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। साफ मौसम में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बर्फ से ढकी चोटियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगती हैं और लोलेगांव

और जाएं तो वहां घूमने का एक मुख्य आकर्षक हो सकता है चीड़, बलूत और सरू के पेड़ों के बीच से गुजरने वाले शांत रास्ते, क्योंकि ये रास्ते अपने आप में बेहद खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही इनकी सुंदरता आपको कहीं ना कहीं आपके एक तरह से आपके मस्तिष्क में मेडिटेशन का काम भी करती है, क्योंकि ये इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाती है कि आपका मन अपने आप मेडिटेट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सूर्योदय या सूर्यास्त देखें लोलेगांव से, तो ये आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि कंचनजंगा पर्वतमाला पर सूर्योदय देखना एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। कई पर्यटक सुबह जल्दी उठकर एक सुंदर सुबह की तलाश में पहुंच जाते हैं सूर्योदय देखने के लिए, जहाँ से वे दिन की पहली किरण को बर्फ की ढकी चोटियों से गोल्डन कलर यानी सुनहरे रंगों में रंगते हुए देख सकें। दोस्तों, लोलेगांव के आसपास हरे भरे जंगल तो भरे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ के हिमालयी जो पक्षी हैं, ये यहाँ के सौंदर्य को और भी अधिक और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

कार्यक्रम के अगले तराने को सुनाने से पहले आपको बता दें कि बुधवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं राही मतवाले, और आज हम राही मतवाले के सफर पर पहुंचे लोलेगांव। तो दोस्तों, अगर आप लोलेगांव जाना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है और ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वहां से लावा लोलेगांव के लिए आपको टैक्सी आराम से मिल जाएगी। अगर आप जा रहे हैं ट्रेन से तो सबसे निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि NJP जो है ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही निकटतम रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां आप जीप या फिर निजी टैक्सी ले सकते हैं। दोस्तों, सड़क के मार्ग से भी आप कलिंगपोंग पहुंच सकते हैं, और फिर सिलीगुड़ी से लगभग 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर या टैक्सी किराए पर लेकर आप पहुंच सकते हैं लोलेगांव। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि लोलेगांव घूमने की सबसे अच्छी टाइमिंग या समय क्या है या कौन से महीने में जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर का महीना, और ऐसे मौसम में जब हिमालय के मनोरम दृश्य आपको देखने को भी मिलते हैं, साथ ही सर्दियों में यानी कि दिसंबर से फरवरी में सर्दी आपको अच्छी खासी वहाँ पर मिलती है। तो आप अक्टूबर नवंबर में अगर जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है। लेकिन इसके अलावा आप विंटर्स अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप विंटर्स भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए मार्च से जून की तो यहाँ हरियाली छाई रहती है और मौसम रहता है सुहावना, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जा सकते हैं, साथ ही यहाँ के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम का अगला तराना सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस गीत को, और बता दें आपको कि आप सुन रहे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर कार्यक्रम जो कि है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। दर्पण के अंतर्गत दोस्तों आज के

0: गर्मी रोकने के लिए सख्त फास्ट फूड का प्रावधान करने वाला पेपर रोकने वाला पारित किया। राज्यसभा ने
1: के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंड

0: करनी है, बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री

0: कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
2: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, केनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
3: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
4: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
5: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि

0: पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारे जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आल लिया, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद,

0: के लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है। हमारे सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है, वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है। सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा, तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं। और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं। तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है। तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, हमारा फिर डाटा एसिमुलेशन, न्यूमेरिकल मॉडल, फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट। उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्यप्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, कि टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी। और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहे। तो जो भी बारिश का समय होता है और पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं। और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं।

0: करते हैं, और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है ये इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा जो इंडिया में है हम सारे वाटर शेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस, और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है, तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहां कहां ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में, तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा, तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
0: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि

0: पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिज हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है, जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ PNG है दिल्ली में, जैसे उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
2: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें, आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है, कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है, जो कि ये हैवी रेनफॉल, जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है, उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसा आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नावकास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नावकास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है, वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारा दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ये वार्निंग दे देते हैं। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटेंसिटी, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी, जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा रडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं, आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम

0: सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
1: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर

0: और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
2: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, 1-2 दिन चलेगा वो, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे, जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे, एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं।
0: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन

0: वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज दो वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है। तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार।
4: आकाशवाणी कोलकाता, খবর পড়ছি অনিন্দিতা ভট্টাচার্য। প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও কারচুপি রোধে লোকসভায় আজ পাবলিক এক্সামিনেশন।

0: वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। ये आह्वान पाकिस्तानी सेना की अधिकृत क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर गोलीबारी की खबरों के बाद किया गया है। इस गोलीबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये हत्याएं 27 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण मार्च के फिर से शुरू होने के बाद हुई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इस बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 निजी स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन स्कूलों के प्रबंधन, कर्मचारियों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने नियंत्रण को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बार बार दमनात्मक कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू लागू है तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ब्रिटिश कश्मीरों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में नागरिकों की कथित हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा में पाकिस्तान की संलिप्तता का आरोप लगाया और पीओजेके की स्वतंत्रता की मांग की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। श्री हरीश ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नौवहन और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर आईआरजीसी ने आज दावा किया कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन स्थित एक अमरीकी हवाई अड्डे और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम मुख्यालय को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
2: इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार ये हमले ईरान पर अमरीकी सैन्य हमलों के जवाब में किए गए थे। IRGC ने अमरीकी धमकियों, अवैध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के समाप्त होने तक अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। ये दावा ईरान और अमरीका के बीच सैन्य झड़पों के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच आया है। इस बीच अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, जिसे उसने क्षेत्र में अमरीकी बलों पर अचानक हमले का प्रयास बताया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के IRGC ने पश्चिम एशिया में अमरीकी बलों पर अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC ने कहा कि सभी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। राहत और बचाव दल

0: बचाव कार्य में जुटे हैं। इस भूकंप में कम से कम 62 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल क्यूशू द्वीप के कुमामोतो प्रांत में आए इस भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। काशिमा शहर के एओन मॉल में गैस विस्फोट के बाद दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। भूकंप के बाद लगभग 34,900 घरों में बिजली और करीब 15,000 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है। 8,800 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। वहीं बुलेट ट्रेन सेवाएं अभी भी निलंबित है और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कुमामोतो हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट।
2: भारतीय टीम में अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है। भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी। भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ी और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे। डिफेंस यूनिट में जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और यशदीप सिवाच को टीम में जगह दी गई है। भारत की मिडफील्ड में राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं। भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है।
0: 6-6 टीमों के 2 पूल में बची 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी मैच काका मेघहारा के गिफू प्री फ्रैक्चुअल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुधंती, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भार के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया, जबकि महिला वर्ग में अरुधंती चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 18 हुई और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। UN Human Rights Office voices concern over Islamabad

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक

0: सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तानिया हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।